0: माता पिता बंधु सख सब ही राम नाम।
1: माता पिता बंधु सख सब ही राम नाम।
0: भक्त